0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
0: A radio station for the community, by the community.
1: Inspire FM.
3: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 72 5000.
4: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: आजकल आपके दरवाजे पर मुख्तलिफ चीजें फरोख्त करने के बहाने और मुख्तलिफ कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके चोर आपके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इसलिए होशियार रहें और दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
6: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
7: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
8: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 8 o'clock.

इससे पहले, किससे पहले, इस जन्नत से पहले भी हमको ये मिला था। जी हाँ, दुनिया में। वह उतू, और वो दिए जाएंगे, भी ही साथ उसके। फातू भी का क्या माना था? लाओ उसको, यानी वो लाए जाएंगे, यानी उन्हें खुद जाके नहीं लेना पड़ेगा बल्कि लाए जाएंगे उसको, दिए जाएंगे वो। मुतशाबिहा, मिलते जुलते। मुतशाबिहा का जो रूट है वो है शीन बे हे। शबीह का लफ्ज़ सुना कभी? ये उसकी शबीह है, मिसाल है, यानी रंग शक्ल में मुमासलत, एक दूसरे जैसे। वलहुम, और उनके लिए, किन के लिए? जन्नत वालों के लिए। फीहा, उसमें, यानी उस जन्नत में। अजवाजुन, जौज की जमा है। जौज कहते हैं स्पाउस को, सिर्फ बीवी के लिए नहीं, शौहर के लिए भी आता है। जब सिर्फ बीवी के लिए लाना हो तो फिर जौजतुन आता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है जौज। तो इसका रूट है जाय वाव जीम, जौज। जौज का माना तो मिलाना, तो अरबी में शादी के लिए जवाज का लफ्ज आता है। जवाज कहते हैं शादी को, क्योंकि शादी में भी दो लोग मिलते हैं, दो खानदान मिलते हैं, तो अजवाज स्पाउसेस, पार्टनर्स। मुतहरतुन, पाकीजा, प्योरिफाइड। मुतहर, रूट क्या है? तहरा, तहरा। इससे मिलता जुलता उर्दू का लफ्ज लाइए, तहारत, ताहिर, ताहिरा, तहूर। मुतहरा, पाक की हुई, प्योरिफाइड, यानी जाहरी और बातनी हर तरह की गंदगी से पाक की हुई। जाहरी गंदगियां कौन सी हैं? जैसे पसीना है, एक्स्ट्रा बाल है, या इसी तरह की और जो इंसान के जिस्म से मुख्तलिफ सिक्रीशंस होती हैं, तो ये जाहरी नजासत है। और बातनी नजासत कौन सी होती है? दिल की नजासत, जैसे हसद, किबर, नफरत, बोग्स, तकबर, वो इन खामियों से पाक होंगी। मुतहरा, क्योंकि जन्नत में कोई जा ही नहीं सकता जब तक कि उसको पाक न कर दिया जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके आमाल अच्छे होंगे, और उनके कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनमें छोटी मोटी गड़बड़ होगी तो अल्लाह ताला उसको पाक कर देंगे। अच्छा, ये पाक करने के कई तरीके, एक तो ये है कि जन्नत में एंट्री से पहले एक पुल होगा, कंतरा, और वहाँ पर जिन लोगों को जन्नत में जाना होगा, अगर उनके दिलों के अंदर कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैल है या कोई नफरत है, तो उसको वहाँ पर साफ कर दिया जाए, दिल धो दिए जाएंगे, फिर अंदर भेजे जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान वाले हैं लेकिन उन्होंने कबीरा गुनाह किए, तो उनको जहन्नम में डाल के, उनको जला के, उनके गुनाह साफ कर दिए जाएंगे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से उनको निकाल के जन्नत में भेजा जाएगा। बुखारी में हदीस आती है कि ऐसे लोगों को जहन्नमी यून कहा जाएगा। वो जन्नत में जाने से पहले उनके जिस्म पर जब पानी डाला जाएगा, वो जिस्म दोबारा उनका बनेगा, तो जब जन्नत में जाएंगे तो स्किन के ऊपर अभी निशान होंगे आग के। माफ़ी मांगना तो वो पाक करना ही है ना, जिनको अल्लाह ताला बग़ैर सज़ा के पाक करता है। लेकिन पाक करने का वो बता रही हूँ कि कैसे कैसे पाक किए जाएंगे, यानी कुछ लोग तो उनके गुनाह माफ़ कर दिए। अब देखिए ना, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसकी नाम अमाल में गलत चीज़ ना हो। पैगंबर मासूम है, हम आम इंसान नेकी भी करते हैं और बुराई भी करते हैं। क़यामत के दिन क्या होगा? अमाल तोले जाएंगे, जिसकी नेकियाँ ज़्यादा हो गई उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा, और जिनकी बुराइयाँ ज़्यादा हो गई लेकिन साथ ईमान भी है, तो उनको क्या किया जाएगा? पहले जहन्नम में भेजा जाएगा, अगर माफ़ी ना मिली फिर वहाँ भेजा जाएगा। तो ये अल्लाह का अपना फ़ैसला है, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन वो खुद है, जो चाहे करे। लेकिन ये सारी मालूमात हमको इसलिए मिलती हैं कि हम तैयारी रखें। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुन, वहुम, और वो कौन? ये ईमान ला के अच्छे काम करने वाले, फीहा उसमें, यानी जन्नत में, खालिदून, हमेशा रहने वाले। खालिदून जमा है खालिद की, और खालिद का लफ्ज़ निकला है खुल्द से, खा लाम दाल, खुल्द। और खुल्द किसको कहते हैं? हमेशगी को, इसी से खुलूद आता है, किसी जगह पर तवील अरसे तक रहना, जहाँ कोई चेंज ना हो, तब्दीली ना हो, कोई फसाद ना हो। वा आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

होती रहे, मेरा उनसे रिलेशनशिप चलता रहे, ये भी मेरा तरीका है ज़्यादा इंटरेक्ट करने का। वरना जितना मैं बिज़ी होता हूँ या मेरा माइंड जितना बिज़ी होता है, रिश्ता पता ही नहीं चलेगा, निकल जाएगा हाथ से। तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा कुछ, और वो काम मुझे ये लगता है कि आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, इसलिए आपको दिया है। और उससे जो इंटरेक्शन होगा, और उससे जो सिर्फ दो इंसानों में नॉर्मली अगर आप देखें तो एक दो चीज़ों की अगर ज़रूरत है, फ़र्ज़ करो वो ज़रूरत अगर पूरी हो जाती है तो फिर आपको बंदे का एहसास ही नहीं रहता, वो ज़रूरत कहीं और से भी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि आपने सिर्फ उसको दी हुई है, तो उस बंदे का की जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में वो हमेशा रहती है, किसी भी तरीके से ज़रूर रहती है। तो इससे भी रिश्ता कनेक्ट करने की हम इंसान कोशिश कर रहा होता है, बट इसके लिए दिमाग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। दिमाग समझते हैं आप? हाँ, वही जो हमने रख छोड़ा साइड पर उस कुरान की तरह, जिससे हम कभी कभी दुआ पढ़ लेते हैं या शादी करा के बेटी के सर से गुजार दे, सर के अंदर नहीं डालते, उस बेचारी की सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजरती है। तो दिमाग भी उसी, दिमाग का कनेक्शन भी, दिमाग भी उसी ने बनाया जिसने आपको किताब भेजी है, उसमें जो लिखा हुआ है वो दिमाग से कनेक्टेड होके आपकी ज़िंदगी में आएगा तो उसके रिज़ल्ट आएंगे। ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये सब कुछ कनेक्टेड है। केओस थ्योरी में भी सब नूर का मंबा है और ये नूर के सारे काम हैं, और नूर जितना आप कनेक्ट करेंगे उतनी ज़िंदगी आपकी आसान होगी, और घूम फिर कर बात सारी की सारी वहीं आ जाएगी। और जब मुझे ये बात समझ आई कि जब सब कुछ घूम फिर के मुझे उसी के पास जाना है, मैं उसी को क्यों ना पकड़ लूँ डायरेक्टली, मैं जब सब का मालिक ही वो है तो मैं सोर्स में क्यों ना हाथ डाल दूँ, बजाय इससे मांगूँ, उससे, उसके बंदों से मांगूँ, मैं इससे करूं, उसके पीछे जाऊं, ऐसे करूं, मैं हलकान हो जाऊं, मैं सोर्स को ही क्यों ना पकड़ लूं जो सब कुछ देने लेने वाला है, बड़े से बड़ा काम भी और छोटे से छोटी चीज़ भी, उससे मांगते हैं और कोशिश हम करेंगे। और उसमें जब वो दे, क्योंकि उसने दिया है जो ऑल माइटी मैग्नानिमस ऑल नोइंग सब कुछ है, तो वो जब वो देगा तो उसमें बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। इंसान जब देगा तो वो इंसान जब भी देता है तो उसने कुछ लेना भी होता है, कुछ और मामलात भी होते हैं, दुनिया है, इंसान ऐसा ही होता है, दैट इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन मांगना सिर्फ और सिर्फ रब से है, उसको पाने के लिए इंसानों के साथ जो डीलिंग करनी है वो सही होनी चाहिए, उसमें नीयत ठीक होनी चाहिए, उसमें खुलूस ऑनेस्टी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें गिव एंड टेक जो किसी का बनता है वो होना चाहिए, सच के ऊपर बेस करके होनी चाहिए। सच के ऊपर बेस करके कोई भी रिश्ता, किसी भी चीज़ को, कोई भी बिजनेस चलाया जा सकता है। इसके जो इसके ऊपर चार शेर बिल्कुल सही बैठते हैं। हमने जितनी आज बातें की हैं, अगर ये चार शेर आप जब इनको गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा आज के शो का हक अदा हुआ। शो का हक अदा करने वाले हीरा सिंह जी हैं, मेहरबान लोग हैं, जितने भी आज हैदर जी आई, डॉक्टर साहब आई, तमाम लोगों ने मिलकर ये शो बनाया, और पता ही नहीं चला इन दो घंटों का, एनर्जी भी बहाल हो गई, कोई काम की बात भी आप लोगों तक, और कोई आर्काइव्स भी जो हैं जी लोगों तक पहुंच के, कम से कम आवाज़ ज़रूर पहुंच गई। हमारे कुछ टेक्निकल इशू जा रहे हैं स्टूडियो में, हम आजकल उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी बेहतर चीज़ें इसमें से निकलेंगी। बस आपने काम की बात याद रखनी है, वो क्या है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मुलाकात होती है आप तमाम लोगों से इंशाल्लाह अगले शो में। खुश रहिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: पेश कर रहा है। 11th ऑफ जुलाई बरोज हफ्ता, दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक, क्रिसन होल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
1: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
2: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter, when it matters. Your donation can save lives, right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
3: Allah. Bakhshish teri aankhon ki taraf dekh rahi hai, Mohsen tere darbar mein chup chap khada hai. Main Rose Gul Bazm-e-Naat ke saath aapki khidmat mein hazir hota hoon har Jumatul Mubarak. आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। तो सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1
4: Every Friday at 11 AM.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:00.
6: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
7: This is the national and international news today, Thursday, 9th of July, for Inspire FM, read by Shahi Mirza. US launches strikes on Iran for second night as Tehran targets bases in Kuwait, Bahrain, and Qatar. UN probe finds mass killings, gang rapes by Sudan's RSF amount to genocide. Bangladesh, a country that made huge progress on measles, now reports 120,000 cases. Temperature to soar above 30 degrees Celsius as NHS warns of sustained pressure during UK heatwave. Disability benefit not fit for purpose, minister leading review says. Burnham on course for number 10 as Labour nominations open. Starmer hints at bank holiday if England win World Cup. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
8: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. अमरीकी प्रेसिडेंट ने ईरान को एक मरतबा फिर धमकी दी है कि अब ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मुआहदा कर ले या फिर अमरीका फैसला कुन कार्रवाई करे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने बरतानिया के दफाई खराजात में इजाफे का ऐलान किया है। आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा है कि मौजूदा मसाइल का वाहिद हल बरवक्त इलेक्शन है। सामीन, ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
6: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
1: Inspiring Luton for 25 years. Inspire FM.
2: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
3: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
4: अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
5: इट डजंट टेक मच टू ब्रिंग सम डिफरेंस। You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
6: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
7: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
4: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
5: Rishta Networking. Aaj ke is masroof aur gehma gehmi ke daur mein rishta dhoondna kisi muhim se kam nahi. Ye ek mushkil kaam hai, lekin ghabraiye nahi. Inspire FM Rishta Networking ke saath milkar community ke is masle mein aapki madad ke liye apni khidmat पेश कर रहा है. 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे. हमारे पास महदूद निशिस्तें बाकी हैं. आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए. मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk. अपने जीवन साथी की तलाश. रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ.
6: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
7: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter when it matters. Your donation can save lives right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
8: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
10: Okay. एक अच्छा सवाल था पिछले सेशन के बारे में, अल आलमीन के बारे में. इस बात की क्या दलील है कि अल आलमीन जहानों के लिए नहीं, लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैंने बेसिकली लोगों की बात की थी ना. कुरान ने कहा है एक और मकाम पर, तबारक अल्लज़ी नज़ला अल फुरक़ान अला अब्दिही ليكون للعالمين نذيرا. اللہ تعالیٰ کتنا مبارک ہے وہ جس نے قرآن کو نازل کیا, فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے خبردار کرنے والا بنے. اگر آپ کہیں عالمین کا مطلب ہے آسمان, زمین, پہاڑ, ستارے, پہاڑوں کو خبرداری کی ضرورت ہے, آسمان کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے, خبرداری کی انذار کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ لوگوں کو ہوتی ہے نا. اولم ننحق عن العالمین, ایک رسول سے کہا گیا قرآن میں ہم نے آپ کو عالمین سے منع نہیں کیا, یعنی آپ لوگوں کے چکر میں نہ پڑا کریں, ان کی باتوں میں عمل دخل نہ کریں, اپنی بات سے بات رکھیں, اپنے کام سے کام رکھیں. وہاں بھی العالمین کا ذکر کیا. قرآن میں بار بار العالمین لغت کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے عالمین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت فاتحہ میں کیا ہے؟ فاتحہ کی میں بات ہو ہی نہیں رہی آسمان زمین کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی. اصل میں فاتحہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایک رشتے کو قائم کرنا ہے رب اور عبد کے درمیان. جو اگر آپ کہیں نا لب لباب کیا ہے فاتحہ کا, وہ یہ ہے رب اور عبد کا رشتہ. تو اس کا ہر لفظ واپس یا رب کی طرف جائے گا یا عبد کی طرف جائے گا. یہاں السماواتی والارض کہا ہوتا تو عبد کی طرف بات نہ جاتی, کہیں اور چلی جاتی, لیکن العالمین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف واپس ہے یہ بات. یہ قرآن کے الفاظ کا ایک دقیق استعمال ہے. ہر لفظ کا ایک مقصد ہوتا ہے سورت کے اندر. جب سورت کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو ہر لفظ اس مقصد کی طرف آپ کو واپس لے جاتا ہے, اور وہ مقصد پھر خود ہی سے واضح ہو جاتا ہے. اب آگے لفظ آ رہے ہیں, بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. الرحمن الرحیم, کیا ترجمہ کریں جی الرحمن الرحیم کا؟ اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے جی, بتائیں آپ مجھے. جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے, عام ترجمہ یہی ہے نا. ٹھیک ہے, پہلے عربی میں سمجھ لیتے ہیں. رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلے ہیں. عربی کے اعتبار سے رحمان اور رحیم کا جو اصل ہے نا دونوں کی, وہ ایک ہی ہے. اور وہ کیا لفظ ہے؟ رحم. تو پہلے رحم کو سمجھ لیں. رحم میں دو معنی ہیں. رب میں کتنے معنی تھے؟ پانچ. رحم میں دو معنی ہیں. ایک ہے شدید محبت, شدید محبت, ایسی محبت جو اپنی محبت کے جواب میں کوئی توقع نہ رکھتی ہو. انکنڈیشنل لو, بے لوس محبت. دوسرا معنی اس کا ہے مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا, ہر طرح سے کسی کا خیال رکھا جائے تو آپ اس پر رحم کر رہے ہیں. رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو. اور ماں کے پیٹ سے ماں کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو اس کو سے شدید محبت ہے, اور وہ عجیب قسم کی محبت ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں, اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کو الٹی آ رہی ہیں, اس کو کمر میں درد ہو رہا ہے, اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا, اس کو سانس نہیں آ رہی, اس کو نیند نہیں آ رہی, نہ نیند میں چین, نہ بیٹھے ہونے میں چین, نہ لیٹے ہونے میں چین, نہ کھڑے ہونے میں چین. اور اس کی تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے, ماں کی ساری تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے, وہ کیا ہے؟ بچہ. اور جیسے جیسے وہ بچہ تکلیف میں اضافہ کرتا ہے, الٹا ماں اس سے کم محبت کے بجائے کیا زیادہ محبت کرتی ہے. پھر آخری لمحہ آتا ہے, بچہ تقریباً ماں کو مار ڈالتا ہے, تقریباً مرے, کتنا خون اس ماں نے بہایا ہے, اور زندگی میں اس کا اتنا خون نہیں نکلا ہوگا جتنا اس بچے کی وجہ سے نکلا ہے. اور نکلنے کے ساتھ ہی بدلہ دینے کے بجائے کہ تم نے کیا یہ میرے ساتھ, ساری دنیا کو وہ بھول جاتی ہے اور اس کی ساری محبت بچے کی طرف. اور جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کا مکمل طور پہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے, کرایہ پہ ہوا ہوا ہے, کھانے کا انتظام ہے, صفائی کا انتظام ہے, سارا انتظام کس نے کیا ہوا ہے, سب پوری طرح سے خیال رکھا ہوا ہے. رحم سے دو معنی نکلتے ہیں, شدید محبت اور مکمل خیال, مکمل طور پر خیال کرنا. اچھا, اب رحمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بھائی رحم کرو, استاد آپ کو فیل, ٹیچر آپ کو فیل کرنے والا ہے میٹرک کے امتحان میں, سر جی رحم کریں. سر جی رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سزا نہ دیں. हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सजा ना दें सर, रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक और मौका दे दें। क्या मतलब है सजा ना दें? पुलिस वाले ने रोक दिया, भाई रहम करें प्लीज़ यार, देर हो रही है जॉब को, आइंदा नहीं करूँगा। रहम हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? सजा ना दो। अरबी में रहम कैसे इस्तेमाल हो रहा है? दो चीज़ों के लिए। क्या बताया था मैंने? शदीद मोहब्बत। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अरबी जबान के अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उनको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उसके नए मायने निकल आते हैं, लेकिन हमें बहुत ही गलत किस्म का एक एतमाद आता है, नहीं कुरान के बहुत सारे अल्फाज मुझे समझ में आते हैं, कुरान में है और रहमान रहीम, रहम करने वाला, रहम की उर्दू जिसकी उर्दू जबान है उसको कैसे समझ नहीं आएगा? जी ये रहम का लफ्ज़ तो है लेकिन ये उर्दू नहीं है, ये अरबी वाला रहम है, ये उर्दू वाला रहम नहीं है। और इनमें फ़र्क है कि नहीं? वो बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं अल्लाह को रहम करने वाला समझूँ, मैं समझूँ बस वो जो अजाब देने वाला था लेकिन देते देते रुक गया तो उसने रहम कर दिया, लेकिन माँ के रहम से अजाब का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। बल्कि इसका बुरा तर्जुमा इंग्लिश में भी बहुत आम है, मर्सी। मर्सी भी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, दी मिलिटरी शोड नो मर्सी, द जज शोड नो मर्सी, यानी फौज ने कोई रहम नहीं किया, बेरहमी से मारा, जज ने बेरहमी से फैसला किया, यानी उसने कोई लिहाज नहीं किया। लेकिन इसके मायने मनफी होने के बजाय असल में मुस्बत हैं। इसका ताल्लुक मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल से है, पहली बात। अच्छा, अब कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए रहमत वाले इस सूरत में? दो, अर्रहमान और अर्रहीम। अब इन दोनों का आप हमें समझना पड़ेगा, दो लफ्ज क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर बात एक ही है तो दो दफ़ा क्यों? तो इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहली बात करेंगे अर्रहमान के बारे में। रहमान जैसे लफ्ज अरबी में और भी हैं, आतशान, गतबान, जवान, इसको कहते हैं फ़ालान। लफ्ज जो एक ही तरह के होते हैं ना, उनका एक वज़न होता है, इसको वज़न कहते हैं अरबी में, गतबान, आतशान, जवान, रहमान। इन अल्फाज में तीन खसूसियात होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रहमान जैसे अल्फाज में तीन खसूसियात होती हैं। पहली खसूसियत होती है इसमें शिद्दत होती है, तो रहमान बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला, और रहम अरबी वाला रहम, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ही ज़्यादा ख्याल करने वाला, शदीद ख्याल करने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला, पहला मायना। दूसरा मायना इसका यह होता है कि ये फौरी होती है, अभी अभी, यानी यही नहीं कि वो बहुत शदीद मोहब्बत कर रहा है, बहुत शदीद ख्याल कर रहा है, अभी अभी कर रहा है, यानी कि करेगा, फिक्र ना करो अगले साल करेगा, फिक्र ना करो बहुत जल्द करेगा, नहीं अभी अभी कर रहा है, अलन फौर, अलहदूस, इसको बनाखा भी कहते हैं अलहदूस। लेकिन तीसरा मायना ज़रा पहले आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, तीसरा मायना है कि ये किसी वजह से आर्जी होता है, टेम्पररी होता है। जैसे आतशान कहते हैं बहुत ही शदीद प्यासा, आतशान, क्या किसी वजह से ये शदीद प्यास ख़त्म हो सकती है? पानी से, यानी वो परमानेंट नहीं है, दायमी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। जवान, शदीद भूखा, क्या किसी वजह से जुआ, भूख ख़त्म हो सकती है? खाने से। गतबान, शदीद गुस्से वाला, हो सकता है सज़ा देने से या बदला लेने से या समझाने से गुस्सा उतर रहा है। अब कह रहे रहमान, शदीद मोहब्बत करने वाला, अभी अभी करने वाला, लेकिन इसमें थोड़ी सी डराने वाली बात भी है, शायद इंसान कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिस वजह से वो इस रहमत का मुस्तहिक ना रहे। जैसे पानी प्यास को हटा देती है, खाना भूख को हटा देता है, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो रहमान से रहमत को हटा सकती है? रहमान तो वो रहेगा, मेरे लिए नहीं होगा, ये मुमकिन है? तो इसमें एक तरह से एक टेम्पररी थ्रेट आ गई, एक तरह से एक खतरा है, अंदेशा है इस लफ्ज के अंदर भी, एक बड़ी अजीम नेमत भी है और साथ में अंदेशा भी है। अच्छा, ये तीन बातें थी रहमान के बारे में, क्या तीन बातें थी मुझे दोबारा याद कराइए? शिद्दत, फौरी, आर्जी। ओके, रहीम के बारे में दो बातें याद रखनी है, रहमान के बारे में तीन, रहीम के बारे में दो। ओके, वो क्या है? पहली बात कि ये हमेशा रहने वाली सिफत होती है, कोई हमेशा रहने वाली खसूसियत। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, आप कहें ये बहुत बहुत इल्म वाला शख्स है, बहुत इल्म वाला शख्स है, वो जब सो रहा है ना वो फिर भी इल्म वाला है, जब वो जागा हुआ है वो फिर भी इल्म वाला है, जब वो खाना खा रहा है वो फिर भी इल्म वाला है, और जब वो अपनी इल्म की बुनियाद पर कुछ सिखा रहा है फिर भी वो इल्म वाला, यानी वो सिफत उसके अंदर है, चाहे उसका मुजाहरा हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो सिफत है, उसके अंदर है, वो हमेशा है। मैं कहूँ ये लड़का लंबा है, वो खुश हो या ना हो, वो गर्म हो या सर्द हो, वो या अंदर हो या बाहर हो, लंबा तो वो लंबा ही रहेगा ना, वो हमेशा के लिए लंबा है, ये परमानेंट उसकी एक क्वालिटी है, उसकी एक खसूसियत है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ फ़ईल, जैसे रहीम, शरीफ, करीम, अज़ीज़, सब में यही होता है, पहली चीज़ होती है कि ये हमेशा के लिए होने वाली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है काबिलियत या अहलियत, इसको भी समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आप कहें अपने, आप जैसे लेडीज़ को कहें मेरे शौहर जो हैं वो बहुत सब्र वाले आदमी हैं, बहुत साबिर इंसान है, अभी आप पता नहीं, हो सकता है वो भी घर पे हैं, हो सकता है किसी से उनकी बात हो रही है और इस वक्त वो बिल्कुल सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे, मुमकिन है कि नहीं? या हो सकता है अभी वो सो रहे हैं, अगर वो सो रहे हैं तो वो सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं? नहीं, उस अभी तो वो सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर उसकी काबिलियत है कि नहीं, उसका पोटेंशियल उनके अंदर है कि नहीं? यानी फ़ईल, करीम, अज़ीज़, रहीम, इस तरह के अल्फाज होते हैं कि सलाहियत तो है, लेकिन इसका मायना ये नहीं कि उस सलाहियत का फौरी तौर पर मुजाहरा भी हो रहा है, वो इस तरह समझने कि वो अंदर है लेकिन ये नहीं मालूम कि बाहर आ रही है कि नहीं। जिस तरह समझ लें कि गाड़ी है, उसका बहुत बहुत ही ताकतवर इंजन है, लेकिन जब वो इंजन इस्तेमाल ना भी हो रहा हो, सलाहियत तो फिर भी है ना उसके अंदर, ये है रहीम। तो तीन मायने निकले रहमान के और दो मायने निकले रहीम के। अब ये समझ लें, अगर सिर्फ अर रहमान कहा होता तो क्या मसला हो जाता? आर्जी होती, बात हमेशा के लिए ना होती। अच्छा, अगर सिर्फ अर रहीम

0: आप घर पे पहुंचे, खाना तैयार है। वाइफ ने आपके लिए बहुत अच्छा आपका फेवरेट खाना बनाया हुआ है। स्मेल भी आपको आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन प्लेट खाली है टेबल के सामने।
1: भूख, आप भूखे मर रहे हैं।
0: और वो आराम से आके आपके सामने बैठती हैं आपकी वाइफ, और कहती हैं, अगले हफ्ते क्या खाएंगे? अगर वो ऐसा जालमाना सवाल पूछती हैं, उस वक्त आपके जहन में अगला मिनट समझ नहीं आ रहा, अगले हफ्ते की क्या बात कर रही हो बेगम? अभी मुझे बस खाना खाना है। जब इंसान को भूख लगी होती है ना, तो उसको कब की फिक्र होती है, बात की कि अभी की? अभी की फिक्र। आपकी जॉब है, यहां पर मंथली पेचक होता है या बाई वीकली होता है, क्या होता है? चलो पहली को पे मिलनी है या तीस तारीख को पे मिलनी है, ठीक है। फर्ज करें आपका बॉस जो है उसने आपको चेक देना है, 5 बजे आपको ऑफिस से जाना है, 4:50 हो गए हैं, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, फोन उठा नहीं रहा, और आपको जाना है, आपको चेक डिपॉजिट करना है, किराया देना है, ये करना है, और आपको लोग तसल्ली दे रहे हैं, नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, बॉस साहब बहुत रिलायबल हैं, हमेशा टाइम पर आते हैं, आप फिक्र ही ना करें, आप बेफिक्र हो जाए। वो हमेशा ऐसे होते हैं, वो कभी भी लेट नहीं होते, आपको तसल्ली हो जाएगी? हाँ ठीक है, हमेशा तो होते हैं, काश के अभी भी हो रहे होते। जब मुसीबत होती है ना, जब मुसीबत होती है, तो आपको हमेशा वाली चीज की से तसल्ली नहीं होती, आपको फौरी तौर पर तसल्ली चाहिए होती है। अल्लाह ताला ने अर्रहमान का जिक्र पहले किया, क्यों? क्योंकि अर्रहमान में रहमत कब आती है? फौरी तौर पे, अभी आ रही है। अच्छा, वो मिसाल दी थी आपको खाने वाली, भूखे बैठे थे, अब आपने खा लीजिए बिरयानी, पेट भर गया, फिर आप कहोगे, हाँ बेगम वो अगले हफ्ते के बारे में क्या बात कर रही थी आप? अब कैसे दिमाग खुल गया? क्योंकि इंसान की नेचर में क्या है, जब अभी वाला मसला हल हो जाए तो दिमाग कहाँ जाता है? आगे के बारे में, यही होता है ना। अभी का मसला हल, अभी अगर अभी का मसला है तो आगे कुछ समझ नहीं आती। अगर अभी का मसला हल हो गया, एक दफा इधर की तसल्ली हो गई, तो फिर आगे की। इसीलिए जो लोग फाइनेंशियली मुश्किल में होते हैं वो आगे की नहीं सोच सकते, और जो लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं वो थेरेपिस्ट के पास बहुत जाते हैं, क्योंकि उनको एंग्जाइटी होती है किस चीज़ की? फ्यूचर की, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इसका क्या होगा। अभी की तो कोई फिक्र है नहीं, खाना है, छत है, सब कुछ है, तो अब यहाँ का तो मसला हल हो गया, अब आगे की सोचो। अल्लाह ने क्या किया, अभी का मसला हल करने के लिए अर्रहमान दे दिया, हमेशा का मसला हल करने के लिए क्या दे दिया? क्या बात है, अर्रहमान अर्रहीम। उसकी तरतीब भी क्या अजीब तरतीब है, उसको अब इधर से उधर करो बात वो नहीं रहेगी, वो अपनी जगह उसका एक एक मकाम है। और फिर इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की अजीब तफसीर है इसका, इन दो अल्फाज की, कहते हैं अर्रहमान दुनिया के लिए और रहीम आखिरत के लिए। कहते हैं अर्रहमान दुनिया में हर एक के लिए, और अर्रहीम सिर्फ अहले ईमान के लिए आखिरत में। ये बात भी अब समझ में आ गई, क्यों? अर्रहमान में क्या था, हमेशा के लिए क्या आर्जी? दुनिया भी तो आर्जी है ना, पर इस आर्जी दुनिया में अल्लाह सिर्फ क्या मुसलमान को रिस्क देता है? सबको देता है, सिर्फ कुछ लोगों पर रहम करता है, सब पे करता है, लेकिन आखिरत में जो हमेशा की रहमत है वो किसके लिए है? अहले ईमान के लिए। और आखिरत का लफ्ज ऐसा होना चाहिए जिसमें हमेशगी हो, और वो क्या लफ्ज है? अर्रहीम। अजीब। आप नोटिस करेंगे कुरान में जन्नत से मुतालिक रहीम भी आता है, क्यामत के दिन से मुतालिक अर्रहमान भी आता है। क्यों? क्यामत का दिन हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन क्यामत के दिन एक खास शिद्दत वाली रहमत की जरूरत है। नहीं, لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن الرحمن। तो जब अल्लाह ताला की बहुत शदीद मोहब्बत होती है ना, तो उस वक्त आपको अर्रहमान का लफ्ज मिलेगा, बहुत शदीद रहमत आपको।

0: तदब्बर करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी शदीद मोहब्बत है। इसीलिए फिर आपको सूरतुर रहमान समझ में आएगी, और रहमान अल्लमल कुरान, जिसने इतनी शदीद मोहब्बत की, इतना मुकम्मल ख्याल किया कि उसने उस मुकम्मल ख्याल और शदीद मोहब्बत के नाते कुरान सिखाया। इसलिए कुरान सिखाया, हमने क्या बना दिया कुरान को, और कुरान किस लिए सिखाया गया था, किस मोहब्बत से सिखाया गया था, क्या लिहाज करके हमारा सिखाया गया था, हमने क्या बना दिया कुरान को, सुभान अल्लाह। तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बारे में।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan.
0: दो लफ्ज जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं, एक रब और एक मालिक, और उन दोनों के दरमियान दो अल्फाज हैं।